हे मेरे मालिक, सब तेरे कोलों मंग रहे ते मंगिया उथों ही जांदा है जिथों दात मिलदी हो, जिथों मंग पूरी हो जाए। इसलिए सब तेरे कोलों मंग रहे ने, पर गल कमाल दी है, मंगल वाले बहुतात विच हन जिन्हां दी कोई गिनती नहीं, पर देन वाला इको ही। ते हर मंगते दी मंग वखरी है, ए नहीं कोई इको ही मंगदा होवे। जिन्ने मंगण वाले ओनिया ही उन्हां दीयां मंगा, पर हे परमात्मा तू देन वाला एक है, कुर्बान हां तेथों जो तू सब दीयां मंगा कबूल कर रहे है। हुण गल मंगण दी चली है, ते साहब कहिंदे ने आ हुण विचार इस गल दी वी कर ली है, परमात्मा देण तो इनकार ते नहीं करदा, पर असी मंगणा किवें है ते मंगणा की है।

फिर मंगन जाइए। ऐसी मंग ना करिए जे दोबारा मंगनी पै जाए। कहते मंगना भी है तो एको बार मंग लो, क्योंकि परमात्मा को जो असी मंगना है वह मिल जाना है। ते मंगन लगे इस गल नू सोच लेना चाहिए कि मैं मंग की दे। हुण साहिब सानू यह गल समझांदे ने

मंगली जाए। केसो केसो कुकिए ना सोइए आसार रात दिवस के कुकने कबू को सुने पुकार, कभी ते पुकार सुनेगा ना, बस मंगता मंगी जाए, मंग बार बार दोहराई जाए, किवें मंगे बबीहे दी तरह। उस चातक दी नहीं आई जिड़ा बार बार प्यू प्यू करदा रहिंदा, मंगी जांदा है ना, दिन विंदा ना रात विंदा, वो पुकारा करी जांदा है। बबीहा बोल रहा सी, किसी ने आवाज मारी ते आखिया बबीहा क्यों प्या बोलना, कहना एक बूंद चाहिए, एक बूंद ली बोल रही, मंगती का पहला गुण है जी। कहने संसार विच कितना बड़ा समुद्र है, नदियां नाले ने, सागर हन, तालाब हन, वो कितों भी एक घुट पानी का पी के अपनी प्यास बुझा ले। कहने नहीं, ये पानी मेरी प्यास नहीं बुझा सकते, मैनू तो एक बूंद चाहिए, एक बूंद वास्ते मैं इतना प्यू प्यू कर रही हूं। ख्याल करियो जी, एक बूंद जल कारण चातक दुख पावे, एक बूंद वास्ते वो किन्ना बोल ले। कहना जा जाके सो, आप भी सौ ते मैनू भी सौन दे, क्यों नींद हराम कर रहे। बबीहा नहीं मुड़िया जी, बबीहा बोलता जा रहे। आखिर की होया, वो एक लिव नाल बोल रहा सी, एक कोलो मंग रहा सी। बाणी विच फैसला है जी,

उसनु कोई सुनावे कोई कहे, अगर कोई झूठी कहानी सुनावे लोग उसनु भी सुनते हैं, पर ए ते परमेश्वर दे नाम दी कहानी सच्ची कहानी। और भगत कबीर साहब कह रहे हैं, अंतर जोत

तीन बंदा विच इस तरह वंडदे हन। हे भाई, जे कोई मनुख अपने आप नूं गुरु दे हवाले करदा है, ओ प्रकाश रूप परमात्मा दे मेल दी अवस्था नूं समझ लैंदा है। उस दे अंदर जोत जग पैंदी है, उस दे अंदर राम दा प्रकाश हो जांदा है। पर इस अवस्था नाल जान पछाण करन वाला हुंदा कोई विरला ही है। गुरु दे सन्मुख होए अजिहे मनुख नूं इह समझ आ जांदी है कि संसार एक रुख समान है।

अमृत की बाड़ी है रे, तिन हर पूरे करिया। ऐ भाई, इस संसार अमृत की बगीची है, अमृत का बाग है, और इस बाग नू परमेश्वर बनाण वाला है। इस गल नू ओ समझदा है जिदे अंदर राम दा परमेश्वर दे नाम दा प्रकाश हो जाए, ते जिदे अंदर राम नाम दा प्रकाश हो जाए

मैं सिमरन करके ये गल जान ली है कि सिमरन करन दे नाल जिथे दुखां दा नाश हुंदा है उथे जग जीवन सिंह जीव समाना जीवन देने वाला जेड़ा परमात्मा है ओ दे नाल जीव दा मिलाप हो जांदा है और ओ इंसान इस कहानी नूं जान लैंदा है सिमरन सदका कि सारे विच परमेश्वर दा नूर है ओ दी जो

परमेश्वर दे नाम दा कीर्तन सुनोगे उतना समा तुहानू अपने दुख कलेश भुल जाणगे ते जदों उस रंग विच उठोगे दुख कलेश फिर घेर लैणगे। इसे वास्ते ते गुरु महाराज भगत गुरमुख उपदेश करदे हन कि हर वेले परमेश्वर वल ध्यान रखो। जिवें कीर्तन सुनदे आ दुख भुल जांदे ने, हर वेले उहदा नाम चेते रखोगे तो दुख कलेश

इतना चानना कितनी रोशनी होंदी है एक सूरज दे चढ़न ते। अगर हजार सूरज भी चढ़ पवे, सौ चंद्रमा भी रोशनी देवे, तां वी मन दे विच हनेरा रहिंदा है अगर मन विच ज्ञान नहीं। कई बार आपां देखदे हां एयर कंडीशन कमरे होंदे ने पर अंदर बैठा इंसान सड़ रहा होंदा है गुस्से दे नाल, उहदे मन नूं चैन नहीं होंदा। रोशनी विच इंसान बैठा होवे अंधेरे विच होंदा है, अंधेरा केड़ा? अज्ञान दा। अज्ञान की है? अज्ञान यह है कि दूसरे का हक मैं खावा, अपने सुख वास्ते दूसरे का हक खाना, दूसरे नु दुख देना, यह है अज्ञान। ते ज्ञान की है? ज्ञान यह है कि भाई सारे विच परमेश्वर है, सारे विच खुदा है, वाहिगुरु है, जे सारे विच वो है फिर ते मैं सारे नाल प्यार करांगा। इन्हां गल्लां

जितनी माया तेनू दिती है उतनी तू लै, जितनी माया मेनू मिली है वो मेरे कोल रहन। पर ब्रह्मा छोटा भरा कहन लगा, सेठ ने तेनू वड्डा समझ के ज्यादा माया दिती, मेनू छोटा समझ के थोड़ी माया दिती। भावे उन्हें माया तेनू बहुती मैनू थोड़ी दिती, पर गए थे आप कट्टे से, इस करके असी बराबर हिस्सा करना। और पैसे तो झगड़ा हो गया, और झगड़ा होंदा भी अक्सर देखते हैं, देश दे वजीर या सरकारी लोग भी चौधरी और माया दे पीछे अपना जमीर देश कौम भी बेच देंदे हैं। इस वास्ते नहीं कि उन्होंने कुछ सेवा का चा है, बहुत घट होंगे सेवा वाले, बहुते थे अपने स्वार्थ वास्ते ये नारा लगाते नहीं, असा सेवा करनी है। नारियां दे नाल सेवा नहीं होंगी, सेवा ते मन होंगी। हुण मन विच लालच, दोनों भरा हैगे ने भगत, पर माया पिछे लड़ पे। ये लड़ाई इथों तक जा पहुंची, वड्डे भरा ने श्राप दे दिता, ब्रह्मा तू लालच किया, अगला जन्म तेरा तंदुए दा होगा, पानी विच रह के, पानी दे विच रहन वाले जीवां नू खा के अपनी लालच वाली ये बिरती पूरी करेगा।

तेनु परमेश्वर नजर आवेगा इन्हा भगतां दी तरह। पर एक वरी तू भी कह उठेगा, ऐ भाई जानी जानी रे राजा राम की कहानी, मैं भी परमेश्वर दी कहानी नु जान ले है कि ए संसार परमेश्वर दी बनाई हुई खेड है, परमेश्वर दा अमृत दा बगीचा है।

सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बनी है। सतगुर की रीस होर कच्चू पिच्चू बोल दे से कूड़िया।

प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह, धन धन सतगुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, हजूर अपने ना अमृतमयी वचना दे विच ये आखते हैं कि मेरे अंदर अपने जीवन नू सफल बनाने दी, अपने जीवन नू कामयाब करन दी, इस मनुखा जन्म नू अकाल पुरख वाहिगुरु दा ब्रह्म ज्ञान दा फल लगान दी, जन्म मरण दे गेट चो निकलन दी

और अपना स्कूल खोल के बैठ जाते। बिग बिजनेस। गुरु बाबा जी आखते हैं इन्हों की गल नहीं, जड़े बड़े तकड़े तकड़े योगी कहते कोई योगी है वो अपनी योगा च मस्त है, योगी होवे जोगवे, भोगी होवे खाए, कोई पदार्थों का वेल्थ का वर्ल्डली सक्सैस का दीवाना है वह शगन छकाउण दे विच लगा होया है, तपिया होवे तप करे, किसी नूं तपस्या की क्रेज है वह तपस्या नाल अपने स्तन नूं दुखी करी जा रहा है, तपिया होवे तप करे तीर्थ मल मल नहाए, कोई है जो तीर्थां ते जाके मल मल के नहाउंदा है, तीर्थां ते जाके टुब्बियां लगांदा है, मैल लगी है मन नूं पर वह नलाई शरीर नूं जांदे है, कहिंदे कोई कुछ करदा है कोई कुछ करदा है, ऐ काल पुरख वाहिगुरु आई एम नॉट इंटरेस्टड इन एनी ऑफ दीज, मैं तो सिर्फ एक गल दे विच इंटरेस्टड हां कि कोई मैनू आ के तेरे मिलन दा राह दसे, कोई तेरा सदा दसे, कोई तेरी बाबत जिक्र करे, कोई तेरा सदड़ा, तेरा पैगाम, तेरा सुनेहा, तू की चाहना है, तू किस प्रसन्न है, वट प्लीजेज यू, कोई मैनू ए आके समझाए जिस दे नाल मेरा यह तन सफला हो जाए, कहिंदे मैं उस शख्स नू अपना यह तन वेच देण नू तैयार हां कि ए तेरी चीज होई, तू इसका मालक होया, ए मेरी नहीं, तू जो आखे मैं उसनू करन नू तैयार हां, ए तेरा है पर इसनू सफला बना दे। कहिंदे तेरा सदड़ा सुनी जे भाई जे को बहे अलाए, अगर कोई बैठ के रब दा दीवाना, रब नाल जुड़िया होया, रब दा प्रेम दा गीत अलाए यानी अलाप करे, ते कहंदे मैं सिर्फ उसनु सुनना चाहना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योगा इन तपस्या ऑल दीज काइंड ऑफ मैथड्स, कहंदे मेरी एक ही ख्वाहिश है कि कोई मैनू अकाल पुरख वाहिगुरु दे मिलन दा सद्दा, उसका पैगाम, उसका रस्ता समझाए, ते दसे के किस तरह इस तन नूं सफला करीदा है। कहंदे हन मैं उसनू अपना तन वेच देण नूं तैयार, यह है इस शब्द दे भाव। गुरु बाबा जी इस शब्द च आखदे हन क्योंकि इस तन दे नाल जो बीजना है उही सानू खाना पैना है, जैसा बीजे सो लुणे, जो खट्टे सो खाए, तो असी इस तन दे नाल बहुत कुछ ऐसा बीजते हाँ जिसनों फिर असी खाना नहीं चाहते, इस तन दे नाल असी ओ कुछ बीजते हाँ जिसका जो फल है वह बड़ा कौड़ा लगता है। आप जिन्हें बाणी की अज तुक सुनाई, कहते हैं

सिर्फ मिठिया ही स्वीट चीजा ही नहीं, होर बहुत सारी चीजा जो प्यारियां लगदियां स्वादलियां लगदियां कहिंदे मिठिया समझ के उन्होंने खाया पर कौड़ा उपजा साग, पर उन्हां दा रिजल्ट जो है अखीर दे विच जाके वो स्वाद कौड़ा निकले, उस दे विचों कड़त्तन निकली, शरीर ने ही वो बीजिया पर शरीर में ही वो भोगना पै गया। भोगंग तां रोगंग, शरीर ने ही भोगां दी मौज माणी पर शरीर नूं हुण रोग भी सहने पैने हन। भोगंग तां रोगंग, जितने ज्यादा भोग उतने ज्यादा रोग, जितने ज्यादा डिशेज उतने ज्यादा डिजीज। गुरु बाबा जी कहते हैं ये तन मेरा कोई सफला करता है, वरना इस तन दे नाल मैं रोग अते दुख अते पेन ही ग्रो करता हां, वो खुद मैनू खानी पैंदी है, उदो बड़ी तकलीफ हुंदी है। महाराज जी एक जगह होर बाणी चाकदे हैं, कहते हैं जे सौ वरिया मिठा खाए, कहते हैं

जितने भी शरीर वे रस हन उतने ही दुख लगते हैं। इस करके महाराज जी ने एक पंक्ति दे विच गृहस्थियों नूं खास करके गृहस्थियों नूं यह समझाया है कि जे तुसी गृहस्थी हो तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुहानू अकाल पुरख वाहिगुरु ने जां सतगुरु ने एग्जेम्पशन दे दिती है कि हुण तुसी जो मर्जी खाओ पियो भोगो रस माणो। नो, तुहानू भी योगियां ऋषियां मुनियां वाली ही साधना तपस्या करनी है भावें तुसी गृहस्थी हो, क्योंकि असीं कई दफा सोच लैंदे हां ना कि असीं तां गृहस्थी लोग हाँ, असीं कोई साधु संत थोड़ो हां, अपने आप नूं आप ही एक्सक्यूज कर लेने हैं कि साड़ी सोशल लाइफ भी है, असी गृहस्थी हाँ। हुण गुरु साहब गृहस्थी किस नूं कहिंदे हन यह नहीं असी सुनिया, यह नहीं असी सुने, असी सिर्फ इन्ना ही सुने कि गुरु बाबा नानक देव जी महाराज ने गृहस्थ धर्म नूं बहुत उच्चा आख्या, ऐ सुने ठीक है ना कि गुरु नानक साहब महाराज ने गृहस्थ धर्म नूं प्रवान किया, पर किस किस्म दे गृहस्थ धर्म नूं प्रवान किया ए दसना भी मुश्किल है, इस नूं मनना भी बड़ा मुश्किल है, ते सानू शायद किसी ने दसिया भी ना होगा। गुरु बाबा जी दसते हैं कि ए गृहस्थी जे तू सोचे कि गृहस्थी होने दे नाल तेनू एग्जेम्पशन मिल गई है कि तू हुण बॉडी दे लैवल दे उत्ते रह के सारे बॉडी दे रस जो टेस्ट सन उन्हां नूं माणी जा, तेनू कोई तपस्या करन दी कंट्रोल करन दी अपने उत्ते को मास्टरी करन दी लोड़ नहीं है, क्योंकि चूं तू गृहस्थी है इस करके यू आर अलाउड, वो ये कहिंदे ऐसी गल नहीं। हुण पंक्ति सुनने वाली है बहुत प्यारी, कहिंदे

है गृहस्थी। इसके अर्थ सुनो, सो गृही जो निग्रह करे, कहते गृहस्थी वो है जो निग्रह करे। निग्रह का मतलब, निग्रह का मतलब है कि अपनिया इन्ह सेंसुअल प्लेजर्स के उत्ते अपनी मास्टरी अचीव करे, इन्हों का मास्टर बने, इन्हों उत्ते काबू पाए, इन्हों उत्ते कंट्रोल करने का अभ्यास करे। बेशक आहिस्ता आहिस्ता करे, आहिस्ता आहिस्ता करे, पर एक दिन ऐसा उसके जीवन दे विच आए कि वह उन्हें इंद्रिया के रसा का गुलाम न रहे, क्योंकि जो इंद्रिया के रसा का ही गुलाम रह गया वह शरीर के ही तल ते रह गया, वो शरीर तो बॉडी तो अगह इवॉल्व नहीं होया। जो बॉडी तो अगह इवॉल्व नहीं होया उसनू दोबारा फिर बॉडी दे विच पाया जाएगा, वो फिर जन्म मरण के विचों गेट चो मुक्त नहीं होया, द्वारा उसे ही गेट दे विचों फिर आ जाएगा। और यह भी पता नहीं किस किस्म की बॉडी च पाया जाएगा, यह भी कोई पता नहीं ना। जो शरीर के लैवल से अपनी लाइफ नू एंड करता है दैट विल कम बैक इन इन टू द फॉर्म। तो महाराज जी आखते हैं सो गृही, ओ गृहस्थी है जेड़ा गृहस्थी हुंदिया होया गृहस्थ विच रहिंदिया होया कि प्रैक्टिस करे अपनिया इना इंद्रिया दे तमाम रसा नू मास्टर कर लै, कंट्रोल च कर लै, काबू च कर लै, ते इना नू जित लै। सो गृही जो निग्रह करे। अगली गल, जप और तप। जप इज मेडिटेशन, नाम सिमरन। तप है अपने जीवन दिया, अपने बिहेवियर दिया तमाम जो जो लो नेचर दे जो साडे सुभा हन, जितनी भी साडी लोअर नेचर है, पशुओं वाले सुभा हन, अपने आचरण नू, अपने बिहेवियर नू, अपने लाइफ स्टाइल नू तब्दील करन दी तपस्या करे, तपस्या करे। तो नंबर एक, इंद्रियां उत्ते इन्हां दे रसां कसां उत्ते काबू पाउण दा अभ्यास करे, ए तप करे। दूसरा, अपने आचरण अपने कर्मां नू निर्मल बनाण दे वास्ते तपस्या करे, जप तप संजम, अते अपनी जिंदगी च संजम लियावे। संजम दा मतलब, संजम दा मतलब कि ओ अपनियां नीड्स नू घटावे, अपनियां नीड्स नू अननेसेसरी ना बधाई जाए। पदार्थां नू देख के मार्केट दे विच, बाजार दे विच जो कुछ भी एडवरटाइज किया जाता है, यह जरूरी नहीं है कि उसनू उसने खरीदना ही। बहुत वाइजली अपनियां नीड्स नू समझे, अते अपनियां नीड्स नू वध तो वध सादगी दे विच, सिंपलिसिटी दे विच रखने की कोशिश करे। यह है मतलब संजम दा, कि लाइफ नू बहुत होवे बहुत ब्यूटीफुल एलिगेंट पर बड़ी सिंपल होवे, बहुत सिंपल होवे, और ऐसी होवे कि जिसनू मेंटेन करन दे वास्ते उसनू दिन रात भटकना ना पवे। क्योंकि कई दफा सानू अपने एक्सपेंसेस पूरे करनू ही, अपने बिल्स पूरे करनू ही सारा दिन रात सानू भटकना पैंदा है, जस्ट टू पे अवर बिल्स। पर असी उतने क्रिएट ही क्यों करिए? कबीर साहब ने आख्या है सादा जीवन जियो। गृहस्थी वो है जिस दे जीवन दे विच कहिंदे जिहड़ा गृहस्थी जीवन दे विच बैठा होया इन्हां चीजां उत्ते कम करदा है, अपनियां इंद्रियां नू कंट्रोल करदा है, इंद्रियां दे स्वादां दे उत्ते ओह फतेह पाउंदा है, अते अपने आचरण नू ओह ओदी तपस्या करदा है, अते अपनी जिंदगी च संजम लियांदा है। जप तप संजम भिख्या करे, इस गल दी ओह वाहिगुरु तो भिख्या मंगदा है। पुन दान का करे शरीर, कहिंदे ओदा जिहड़ा शरीर है, कहिंदे
ਉਹ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਭਾਵ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਲਵੇ। ਸੋ ਗਿਰਹੀ ਗੰਗਾ ਕਾ ਨੀਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਅਸਲ ਗ੍ਰਿਸਤੀ, ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨੀਰ ਤੋਂ ਵੀ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਜਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਉਸਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਾਓ ਉਸਨੂੰ।

तो साड़ी विचार ये चल रहे थे कि असी महाराज जी की पवित्र बाणी दे विचों जो सानू तन मिलिया है इसकी सानू पूरी खबर नहीं है कि एक ही वस्तु है, इस दे नाल असी की करना है, इस दे विच की कुछ है, इसका सानू पूरा ज्ञान नहीं है। असी एक बेहोशी जिही दे विच अपना जीवन जो है वो गुजारी जाने। सो गुरु बाबा जी की बाणी दे विचों असां तन दे संबंध दे विच जो सानू ज्ञान विचार शब्दां दे राही मिलते हैं वो असी समझना। दो नुक्ते आप जी की सेवा च दास ने कल अर्ज किए सी। नंबर एक, ये दुर्लभ है, इस तों वध के कीमती शाय कोई होर नहीं। नंबर दो, ये रब दा मंदर है। आओ अज तीसरा नुक्ता आप जी के सामने रखिए। गुरु साहब आखते हैं ये रब दी कामणी है, ये जरा शरीर है ये रब दी पत्नी है, रब दी कामणी है, अते उसने आप इसनू अपनी मर्जी दे नाल डिजाइन किया है, आप उसनू उसने सुंदरताई बख्शी है, आप उसने इसनू सवारिया शंगारिया है। ये शरीर रब दी कामणी है, रब दी औरत है। तो अगर साढ़े पास ये है तो एक रब दी अमानत है, ये रब दी कामणी है। महाराज जी अपनी बाणी च आखते हैं

क्योंकि अमृत वेला है। तो अमृत वेले जाके पहला काम ये करना है कि कर स्नान सेवन करो। स्नान भी हो गया, सिमरन भी कर लिया, इसका फल की मिले। तो अगली पंक्ति

तीर लक्षण आशा जी दीवार न लगा के कीर्तन समाप्ति उस उपरंत अरदास गुरु के हुक्मनामे ए मर्यादा उदास ने बेनती की थी सी भी आज दी चाह सेवक बोलो तो मैं की सेवा कर सकता हाँ तो जो तुसी प्यार दिता है और ये भी गुरु की प्रेरणा से तो उस संसार अज चाह दा लंगर तैयार है और मैं तो भी बेनती की थी कि कई प्रेमी कहने लगे भाई जी साडा भी हिस्सा विच पा आखो श्री भाई कई प्रेमी ते नाल उन्होंने कहा भी साडा नाम ना लई ते असी भी जिना जिना ते गुरु ने मेहर की थी सेवका नाल हित किया है तो उन्होंने चाह का लंगर तैयार किया है तो हम प्यारी सास संगत सारे प्यार नाल क्योंकि अज आसा दीवार का कीर्तन भी पूरा हो गया तो मैं चाहूंगा अखीरला छंद अज आसा राग विच आसा राग तो आओ अखीरला ये छंद है अज आसा जी दीवार के कीर्तन का भोग पै रहा है सर्व आसा पूर्णी आसा जी दीवार तो ये छंद आप आसा राग च लगा

तेरी बाणी ए बाणी ता ऐसी है मैं जिक्र करांगा बाणी बारे कि बाणी की है

पवित्र बाणी इसे बाणी दी बरकत ने बुद्धू दी बुद्ध चमका दिती, इसे बाणी दी शक्ति ने पत्थरां चो नहर वगा दिती। इस बाणी बन्ने लाया सी मक्खन दे डुबदे बेड़े नूं, इस तरनी लखां तारे ने गिण दसां केड़े केड़े नूं। ए ख्वाश हमेशा रहंदी ए कोई गुरमुख नदरी पै जावे, ओ पड़े अगम्मी बाणी नूं मेरे मन दी का

जिन्होंने बाणी नु कुछ समझिया है, कीर्तन कर रहे सन ना इस तो पहला ते पढ़ रहे सन, धन धन गुरु जिन नाम अरातेया, आप तरिया जिनी डिठा तिना ले छड़ाए, सवाल की तै बाणी की है अजे तक समझ नहीं आई, बड़ी बार कीर्तन सुने बड़ी बार कीर्तन कीता है पर अजे तक बाणी दा नहीं पता लगा कि बाणी की है। हुण किहदे कोल पुछिए बाणी की है, ते सात संगत कई कई गुरसिख कई बीबियां जदों गुरु ग्रंथ साहब महाराज दा पाठ करदियां ने, ते जदों पाठ करन तो बाद जितने सफे हो जान, कई लोग कागजां दियां निशानियां रख देंदे ने, ते जिसने कदे प्रतख गुरु की देह समझिया होवे, साडी अख च कोई एक तीला चला जाए ते सानू सारी रात नींद नहीं आउंदी। एक वारी आखो प्यार नाल सतनाम श्री वाहे। सवाल कीता ए बाणी की है, जिसनू बाणी दा पता है उसने कलम चुकी ते लिखना शुरू कीता। सानू एक सनेहा दिता बाणी पढ़न वाले हो, ए बाणी की है। साडी नजर ते सिर्फ इथों तक पहुंची है कि ए अखर ने ए सफे ने जिन्हां नूं असीं वरके कहने हां, जिन्हां नूं असीं पत्रे कहने हां, जिन्हां नूं असीं कई वार होर सुचज्जी बोली विच अंग कहने हां,

मैं जदों ही गुरु ग्रंथ साहब तो रुमाला चुकया, मैं गुरु नानक का सीना, गुरु नानक का दिल नजर आया। तैनू किवें कागज नजर आ गए, तैनू किवें अखर नजर आ गए। ए अखर जितने सारे ने, सचखंड दे समझो तारे ने। दूजे तारे तां टुट जांदे ने, आकाश दे तारे तां टुट जांदे ने, पर ए तारे किवें टुटण। इन्हां तारियां नूं वी लोकां ने तोड़न दी कोशिश कीती, पर ए तां अरश दे तारे नहीं, ए तां दरगाही तारे ने। ए अखर जितने सारे ने, सचखंड दे समझो तारे ने। सुखमनी चन बने आईए, सुखमनी साहब चंद्रमा वांग शीतल है। सुखमनी चन बने आईए, ए जप जी सूरज प्यारे ने। हुण अगली गल बड़ी कमाल दी, ओ कहंदे ने कि ए वरके स्वर्ग दी धरती ने, ए वरके स्वर्ग दी धरती ने, ए स्याही जन्नत दा पानी है, ए बाणी सच्ची बाणी है, अमृत दी कोई ए खाणी है। ए ओ पवित्र बाणी, बाणी बारे कुछ पुरातन लोकां ने ए ख्याल अपना प्रगटाया कि ए बाणी किते उथों तां नहीं आई जिथे समुंदर दे विच भगवान विष्णु आराम कर रहे ने ते लक्ष्मी उन्हां दी सेवा कर रही है, किते बाणी उथों तां नहीं आई। किसी ने ख्याल जाहिर किया जिथे शिवजी शंकर जी कैलाश पर्वत ते तपस्या करते ने कि बाणी किते उथों ना आई होवे। एक होर ने ख्याल का प्रगटावा किया, आकाश विच कोई ऐसा मंडल ना होवे, आकाश विच कोई ऐसी धरती ना होवे जिथों बाणी आई होवे। कहंदे ने दिल दियां गहराइयां विच पहुंच जाओ, बाणी दा जिक्र करन लगा, उस खीर समुंदर चों, गंभीर समुंदर चों, समुंदर तों वी थले चले जाओ। शायद कोई ऐसी थां होवे, उस खीर समुंदर चों, गंभीर समुंदर चों, कवला चू ब्रह्मा सन कई रंग विखाले ने। शायद कोई कवल जिथों ब्रह्मे ने जन्म लिया, शायद कोई उस थां ते ऐसा केंद्र होवे जिथों बाणी आई। कवला चू ब्रह्मा सन

जोबन बनी है। सुंदरता का मान, जवानी का मान और अक्सर इस मान दे विच इंसान वो कम भी कर बैठता है जो नहीं करने चाहिए। पावत रली है जवानी दे मान विच, जोवन दे मान विच नचदा टपदा इंसान किसी की परवाह नहीं करता। इहदा ए मतलब नहीं सोहना रूप नहीं होना चाहिए या जवानी नहीं चाहिए। साहब जी कहते हैं जो सोहना रूप है ते मुबारक है तेरे, जवानी है तेरे ते मुबारक है तेरे, खुशियां हैं तेरे कोल मुबारक है, पर जे हरि का नाम नहीं ते फिर सब कुछ बेकार है। आपको सतनाम से तेरा नचना।

तू हाथी ते सवार हो गए, गहने पा के कीमती वस्त्र पा के सिर ते सोने का छतर चुला के तू आखे मैं बहुत खुश हो गया, तू भावे समझदार है मैं बहुत

वो परमात्मा हर जगह है। ते बच्चे भी कहते हैं वो खुदा हर जगह है। मौलवी रोज पढ़ाता है ते बच्चे रोज पढ़ते, रोज सुनते हैं सुनते हैं, हुण ये गल याद हो गई, एक खुदा सब जगह है, हर जगह है। एक दिन मौलवी ने एवें बच्चियां नूं सवाल कर दिता, बच्चे हो कोई ऐसी जगह है जिथे खुदा नहीं? बच्चे सारे चुप, क्योंकि अज तक ते मौलवी साहब इहो ही पढ़ाते रहे ने कि खुदा हर पासे हर जगह। ते हुण किवें कहीए खुदा किस जगह नहीं? एक बेनती करा, किसे नूं याद करिए ते उहदे नाल संबंध जुड़ जांदा। जे किसे नाल उस संबंध तोड़ना है ते उस नूं भुला दिओ, संबंध टुट जांदा। कई वारी देखदे आ कोई बहुत दूर है, दूसरे मुल्क बैठा है, असी उन्हों याद करते हैं ते याद सदका उहदे नाल संबंध बनिया रहे। ते कई वारी ये देखते हैं कि कुछ शहर विच रहते हैं

आप ही पाया, पर जेता भुल गए। लभदे फिरदिया डोट है सी, पर पता नहीं कितने रख। सौ का नोट जेब विच है, पर चेता भुल गया ते संबंध टुट गया। अचानक जेब विच हाथ मारे आ ते जेब चो नोट निकल आया, संबंध जुड़ गया नोट नाल, क्योंकि नोट लभ गया। हुण घर विच किन्नियां चीजां लिया लिया।

ता पिता ने किया बेटा ओ ते ज्योति ज्योत समा गई। पर उन्हां दी जगह धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आनंदपुर साहब जोता जगा रहे ते पुत्र कहन लगा पिता जी मैं फिर आनंदपुर साहब जा

पिता ने दिता ते क्या बेटा ये 100 रुपया धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के चरणा से रख के मेरे वालों मत्था टेकी 500 रुपया अपने वालों भेट करने वास्ते जेब च पाया धर्मशाला पहुंचे है अरदास करके ये सारिया संगत उज्जैन तो आनंदपुर साहब को तुर गए हूं मन में सोचता जाता गुरु का दरबार कैसा होगा क्योंकि उनकी बाणी में बड़ा आनंद है वो गुरु से समाधि ला के बैठा होगा मैं जाके बुलावगा वो नेता भी नहीं बोलना क्योंकि साधुआं की संगत करता सी ते जो देखता सी उसे तरह गुरु साहिबां

खुशी खुशी आनंदपुर साहब तो उड़े हैं, पर जिस तरह ही आनंदपुर साहब तो बाहर आया ते सारा आनंद गुआच गया। आखो सतनाम श्री माया वाली फिरती फिर जाग गई। जिवें असी कई बार कीर्तन में बैठे होने ये बड़ा आनंद आता, जो गुरुद्वारे बाहर निकलते हैं तो यह आनंद भुल जाता है, होर गल याद आ जाता है। इसे तरह आनंदपुर साहब तो निकले है तो सारा आनंद गवाच के कह लगा मना बहुत माड़ा गीत है, 600 रुपया तो रोड़ के आ गए, एकड़ा प्रसाद दिता है गुरु ने जेड़ा पिता घर रोज ही बनाता है, एकड़ा दिता है। कहते सन जो मंगेगा तेनों मिलेगा, इस कड़े की अपनी कीमत 4 आने नहीं, इन्हें मैं 1000 रुपए कितों दे देने। आपको सतनाम सिर्फ उदास हो गया ते गुरु की निंदा करता होया

बड़ा खुश। पिता ने पूछिया, सुना फिर बेटा, गुरु के दर तू की लैके आए? जद के यार गुरु तू की लैके आए? ते मोरा दियां थैलियां अगे कर दी। जद ने यह कहा, मैं गुरु का वचन ते कड़ा बेच के आया।

अपना दुध पियाया ते मैं चाहना तेरे दुध की कीमत चुका दे। मां बड़ी सियाणी सी, कहने लगी अच्छा हरी सिंह तू इस लायक हो गए, मैं तेनू जन्म दिता है, तू इसकी कीमत दे।

बिस्तर डिटोल देता, बिस्तरा गिल्ला हो गया, कपड़े गिल्ले हो गए, हरी सिंह की जात खुल गई और नींदर नहीं आती क्योंकि कपड़े गिल्ले, एक सर्दी उठ सकता नहीं, उठ सकता नहीं क्योंकि मां नाल वादा कीता है मैं सौवांगा, पासे मारता है बिस्तरा गिल्ला, नींदर नहीं आती पर सास संग मां थे फिर मां ही मां पासा मार के लगी गई, अखा बंद पर जागती, आज मां का मन बड़ा दुखी हो रहा है, आज मेरे पुत्र को नींदर नहीं आ रही, दिन चढ़िया

गुरु प्यारियो, आप जी ने हुने हुने ही गुरबाणी का आनंद मानिया है। असी आप जी का ध्यान एक जरूरी गल वाल दिवाना चाहते हुए बेनती करते हां कि जे आप जी घर विच परिवार विच ते बच्चे नाल गल बात पंजाबी विच करते हो ता आप धनता जो हो, जे कुछ कसर है ता अज तो इस पासे खास ध्यान दियो। बच्चियां पास पंजाबी विच गल बात करन दा समा केवल घर विच ही है, स्कूल विच, दोस्तां विच, घर दे नौकरां चाकरां नाल ता समा उनां नूं मिल ही नहीं सकदा। जरा सोचो, जे बच्चे पंजाबी बोल ते समझ नहीं सकनगे ता गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करना ते समझना ता इक पासे रिहा, ओ गुरुद्वारे जाके की लाभ प्राप्त कर सकनगे? गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी नाल संबंध किवें जोड़नगे? अपना जन्म किवें सफल कर सकनगे? हो सकदा है आप जी ने इस पासे कदी ध्यान ना दिता होवे। असी ता उस दाते दा सुनेहा आप पास पहुंचा रहे हां। जे कुछ उन्ताई है ता ध्यान दियो ते ओ पूरी करो। आप जितनिया वध तो वध जवाना बच्चा नूं पढ़ाओ अच्छा है, पर पंजाबी ता सिखी दा मुढ अथवा फर्स्ट स्टेप है, सिखी दा तुरा है। एक अंग्रेज मुदब्बर ने ठीक ही ता कहा सी कि जिस कौम नूं कमजोर करना होवे उसकी बोली खो लवो, पर असी ता अपने पैरां ते आप ही कुहाड़ा मार रहे हां। जदों गुरु नानक देव जी दा प्रकाश होया ता मुगल राज दा समां सी, हिंदी जनता कमजोर ते निटाल हो चुकी सी। महाराज जी ने इस कौम घातक वातावरण अनुभव कीता ते बाणी विच फरमाया, घर घर मियां सबना जियां बोली अवर तुम्हारी। ए हिंदी जनता नूं हलूणा सी कि तुसी अपना धर्म ईमान छड के मलेच्छां दियां मर्यादा अपना के घर घर मियां बने होए हो ते अपनी बोली भी त्याग दिती है। सो गुरु प्यारियो, अपना फर्ज पछाणो, केवल अपना घर ही नहीं बल्कि अपने होर सजना मित्रां नूं भी इह सुनेहा दे के गुरु दियां खुशियां प्राप्त करो ते पंजाबी बोलन ते पंजाबी पढ़न लई संगतां नूं सचेत करो। अगों दाते दा अपना काम है, आप ही सहाई होएगा, फिर लोग

त्यागो। काम क्रोध संगत दुर्जन की तांते एनस पागो। सुख दुख दोनों सम कर जाने और माने पुमाना। हर कसोग ते रह अतीता तिन जग तत् पिछाना। उस्त निंदा दो ते आगे खोजे पद निर्वाना। जन नान के खेल कठन है किन्हू गुरमुख जाना। जन नान के खेल कठन है किन्हू गुरमुख जाना। साधो मन का मान त्यागो। काम क्रोध संगत दुर्जन की तांते ऐनस पागो। पहला मरन कबूल जीवन की छड़ आस। होए सपना की रैन का ता आओ हमारे पास। गुरु साहब ने बाणी उच्चारण कीती है। जिन्ना ने बाणी उच्चारण कीती है उन्हां ने आप लिखिया है के सो सखा संग विंद है पाई। जो गुर के पाने विच आवे अपने पाने जो चले पाई। सो विचड़ छोटा कावे सो सिख सखा बंद पै पाई। जो गुर के पाने विच आवे जिन्ना ने बाणी उच्चार

अजे भी साईं दी प्राप्ति निराश होके फरीद एक दरख्त दे हेठां बैठा है। दरख्त दे उत्ते चिड़िया बोलिया। फरीद निराशता विच सी, मन च ख्याल आया ए क्यों रौला पा रही है। चिड़िया वल तकिया, चिड़िया क्यों रौला पांदियां। पर चिड़िया फिर बोल दी, जंगल च रहने वाले पंछी बोल रहे हैं। फरीद नु गुस्सा आया, चिड़ियो रौला पांदिया हो तुसी मर क्यों नहीं जांदी। कहण दी देरी सी, सारिया चिड़िया धरती ते आके तड़फण लगी। फरीद ने थकिया, हो मन तू केडी भुल कीती, ए भी पंछी ते तू भी पंछी। आखो श्री वाहिगुरु, आऊं बलिहारी तिना पंछियां, जंगल जिन्ना वास, कंकर चुगन थल वसन, रब न छोड़न पास। तो केडी गलती की थी। नाम जपण वाले दे मन च बड़ी कोमलता होंदी, बड़ा दर्द होंदा है। दुखीए नु वेख के दुखी हो जांदा है, सुखीए नु वेख के निरंकार दा शुकराना करदा है। ए सिमरन वाले दी अवस्था है, बंदगी करन वाले दी अवस्था। फरीद दे दिल च रहम आया, चिड़ियो उड़ जाओ, कहण दी देरी सी, सारियां उड़ गईं। अच्छा, मेरे अंदर तां शक्ति आ गई, मार भी दिता ते जवाल भी दिता। हों मैं आई फरीद तुर पिया, गर्मी दी मौसम, सामने पिंड है, पिंड दे बार बार खूह, खूह दे उत्ते एक नौजवान मुटियार पानी पी भर दी। नेड़े आया, इस लड़की वल तक के फरीद ने कहा, बेटा मैनू पानी पिला। पर इस बीबी ने फरीद वल तक पानी दा डोल कढ़िया, बाहर डोल दिता। फरीद ने फिर कहा, बचड़ा मेनू पानी पिला, मेनू डाढ़ी प्यास लगी, मेरे लब सुख दे जांदे। दूजा डोल कढ़िया, भी डोल दिता। फरीद नू गुस्सा आ गया, कितनी गुस्ताख लड़की, इनू पता ही नहीं कि मैं फकीर हां, मैनू प्यास लगी, मैनू पानी नहीं देंदी, डोल देंदी। अखां लाल करके फरीद ने कहा, पानी क्यों नहीं पिलांदी। तीजी वेरी जिसले फरीद ने बचन कीता, तो इस बीबी ने फरीद वल मुखातब होके कहा, ओ फरीदा, कोई ये जंगल दिया निखसमियां चिड़िया ना समझी, जिन्हां नू मार के जवाल लिया, मैं खसम वाली। आखो श्री वाली, फरीद नू पानी दी प्यास तां बुझ गई, ए प्यास लग गई, सोचदा इहदा ए तां मेरा नाम भी जान गई। जंगल विच चिड़ियां मारियां ते जवालियां, जिथे इंसान तां की, इंसान दी जात हैवान भी कोई नहीं, इहनू किवें पता लग। फरीद ने कहा, बेटी तू अज मेरा मान तोड़ दिता, अला दस तैनू किवें पता लगा। तो इस माई रंग रतड़ी ने कहा, फरीद ए सारी कृपा मेरे पति दी, ए सारी बख्शिश मेरे पति दी है। किस तरह? कहण लगी, मेरी शादी हुई बाबल दा देश छड़ के, मैं अपने साईं दे देश चली। रात दा समा सी, अचानक मेरे कन्ना च आवाज आई, पानी। मैं तकिया, मेरे पति ने पानी मंगया। सोचिया एक पासे लोक लज्जा है, पहला दिन है, लोकी की कहणगे, दूजे पासे पति दा सच्चा ते सुच्चा प्यार। लोक लज्जा नु फरीद मैं ला के एक पासे चा रखिया। उठी, ठंडे कड़े दे विच्चों ठंडे जल दा छन्ना भर के मैं पति दे पलंग कोल पहुंची।
पर निरंकार दी नेत रात दा समा सी मिठी मिठी पौन चल रही सी मेरे पति नू फिर नींदर आ गई। सोचिया जी मैं भी जाके सौ जावां पति प्यासा सुता पिया ए भी ठीक न ते जे जगाउंदियां तां बेआरामी। तो इस ख्याल विच फरीद पति दे चरणा वल खड़ो गई लैके जल दा छन्ना। इस उड़ीक विच जिस वेले पति जागेगा पानी पी लवेगा। कोई समय दे बाद अचानक ही पति दे नेत्र खोले मेरे वल तकिया उस तकनी विच बड़ी बख्शी सी मेर सी पुछे भागवान तू इथे क्यों खड़ोती है सारी विपता दे पानी पी लो। फरीद फरीद मेरा पति उठे मेरी अखां तू लैके पानी दा छन्ना अपने मुंह नाल जिसे लाया फरीद मैं सच दसदी हां पति दी बख्शिश द्वारा ज्यो ज्यो मेरे पति दे अंदर पानी जांदा सी त्यों त्यों मेरे अंदर रब आंदा सी। आ कुल रब पति दी प्रसन्नता भगवान तेरे उते मालिक दियां मेहरां तेरे उते साईं दी बख्शिश पति दी प्रसन्नता दे नाल फरीद मैनू तिन्ना लोकां दी सोझी आख सी। बाबा जी बचन करदे सन वड्डे बाबा जी श्री पति अगे तिन बब्बे पढ़ लवे बब्बा भला जी बब्बा भुल गई बब्बा पाणा पुत्र माता पिता अगे पढ़ लवे सिख गुरु अगे पढ़ लवे घर च ही रब मिल जाएगा खुशी बाहर जान दी लोड़ ही घर च ही रब। इसत्री नूं तां गुरमत विच बड़ी कंसेशन दिती है बड़ी रियायत दिती है मेरे धन गुरु नानक जिस रब नूं लोकी जंगलां च लभदे फिरदे धूणियां तपदे पुठे लटकदे हन किसे ने मोहन धारिया है किसे ने सिर दे सुआह पा ली है रब दी प्राप्ति वास्ते। पर मेरे धन गुरु नानक सच्चे पातशाह फरमाउंदे हन इसत्री अपने पति नूं परमेश्वर समझ लवे घर च रब मिल जांदा है। मिल गया कईआं नूं मिलिया बड़ियां साखियां गुरु इतिहास दे अंदर माई रजनी ने पिंगले नूं परमेश्वर समझ लिया माई रजनी ने पिंगले नूं कौड़ी नूं परमेश्वर समझिया फिर प्यारी सात संगत मेरे पंजे पाई दा ते मैनू पानी नहीं दिता पानी डोली क्यों जांदी है। माई रंगरती ने कहा फरीद कुछ मीलां उत्ते मेरी भैण दा घर है उन्हूं अग लग गई उत्थे कोई पानी दा प्रबंध नहीं इथों पानी पहुंचा रही खुशरी वाली होर हैरान। फरीद ने कहा मैनू सोझी नहीं पई मैं इतने साल बंदगी की माई रंगरती दे चरणा ते ढह पिया फरीद बेटी उमरा वालों तू भावे छोटी है पर गुणा वालों तू मेरे वड्डी मैनू समत दे मैनू साई किस तरह मिलेगा कवन संयोग मिलो प्रभ अपने कवन गुर प्राण पत्र।

खोजत खोजत भई बैरागन, प्रभ दर्शन को हो फिरो तसाई, दीन दयाल कृपाल प्रभ नानक, साध संग मेरी जलन। माई रजनी ने, माई रंगड़ी ने किया फरीदा, किसे मुर्शद की सेवा कर, आखो श्री वाहेगुरु प्राप्ति मुर्शद तू हो गए। कोई गुरु धारण कर, बाबा जी वचन करते सन, कितना जप तप क्यों ना कर लवे इंसान, जितने तक गुरु वाला नहीं बनता वो जप तप सफल ही नहीं होंगे। कितना कर जी पातशाह ने इक्की वेरी तीर्थ यात्रा की थी, गंगा मैया दी स्नान की थी, हर साल जाते सन, होर भी कर्मकांड दान पर करते सन, पर बैरागी ने कह दिता सी, ओ बाबा तू तो मेरा जन्म भ्रष्ट कर दिता है, क्योंकि तू निगुरा है आंखो श्री वाहेगुरु, मैं तेरे हथो पानी पी बैठा निगुरा गुरु जी। गुरु मिल गया भाई सब कुछ, असि गुरु वाले तां बनते हैं जे अमृत छक लीए तो आखो श्री वाहेगुरु, फिर अभी गुरु वाले बन जाते। गुरु का बड़ा मान है, जेदे गल च भाई पटा पाया वे कुत्ते दे ओनू कोई फिक्र नहीं, जे पटा ना वे ओनू फिक्र ही फिक्र। जेड़ा गुरु वाला बन गया वो अपने मालिक वाला खसम वाला बन गया, खसम का बड़ा मान, निगोरे का भी कोई चीज लावारस कुत्तियां दे पर मार मुकाया जाता, उन्हों का जीवन किस काम है। गुरु की वड्डी शक्ति, गुरु का वड्डा आसरा, गुरु का बड़ा मान है। बुले शाह ने लिखिया, ना मैं जब तक पूजा की थी, ना मैं गंगा नहाया, ना मैं पंज नमाजा पढ़िया, ना मैं हज कराया, बुले शाह मैं मुर्शद मिलया उस एवें चा बख्शाया, एवें जिसे मेहर करते भाई मेरा स्वामी। माई रंगड़ी ने कहा फरीद, कोई गुरु तारण कर, चला जा आज मेर ख्वाजा पीर पूरा गुरु है मुर्शिद है उन्हू जाके तारण कर। ख्वाजा पीर दे दर्शन कीते, हे मालिक दे प्यारे हो करो कृपा मेरे उत्ते, आवाज आई फरीद सेवा तू मेवा आखो श्री वाहे। फरीद रोज अमृत वेले पानी गर्म करके अपने पीर नु इशनान करांदा है ख्वाजा पीर। कितना समा हो गया, 12 साल आ जा अखीरला दिन है, पीर ने सोचिया भी कसवटी लगाइए इम्तिहान लगी फरीद दा पूरा अंदरों सेवा करदा कि बाहरों करदा, इम्तिहान लिया। अज बारिश हो रही, जिथों अग बाल के पानी गर्म करदा सी अग बुझ गई,